करके दम रखा तो फिर इलाज करा दूंगा। चली जाए यहाँ पे क्या उसको पास बाबा जी।